हथेलियों में नहीं, वो खुद बना लकीर। जेब से फकीर है तो क्या हुआ, तू इरादे कर अमीर। मेहनत तेरी माशूक, अच्छी सोच तेरी हीर। किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथ में तेरी तकदीर।